निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे सजाए अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदक

अब मैं जाए ऐसा लागी खाला है ऐसी नदियां आपसे बाहर बाजों में जान समुद्र।

माता विश्वित धरती था पृथ्वी धर्म था विश्वी जगत के रंग करके नया कर्मी कर्मी वह विचार अब इतने सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सवैन कच्छ पाई उथे पाए।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

सकाई। हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नी आए, दृग जीवे दृग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन दुर्मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत जित हर।

लोग सुधमंता कोई ना किसी दरिया तेरे तेरे जिग संभाए ठाकुर काहे मन बहु करिया उड़े उड़ आवे सह कोता तिस पाछ बचरी चरिया तिन कावन खलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर करतल दरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओमकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमान।

भगत तेरे भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत तेरे भगत सलाहंतु जी हर अनेक अनेक।

आप हाथ दा मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूरन होए हमारी आशा तोर बजन के रह पियासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो पर जाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे।

चीटी ते पुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए साधन के सुखे एक एक के पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब उदकक करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकरक करत हो कब हो तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप।

कांस मट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभो आद जुगाद रूप सियंभो अवृक्षा मेरी तुम करो सिख उबार अचक संग्रह दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मरीच करो रण काता जे आस तुझ ताओ चलनी पारे तिनके दुष्ट दुखत हाव मारे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट

दुष्ट अरिष्ट त्रै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय निहारु ताके ताप तनक महारु प्रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा सौच कह न कोई।

संसार कर सकता है तो उस संसार दे विचों ही उदी निंदिया कर लगे। जदों आवाज गुरु की सुनी, ज्ञान गुरु का सुनिया, फिर उते बख्यों नी गुरमुख रहा समाई। भी गुरु नानक साहब महाराज साहब वो अकाल पुरख हर थां समाया होया, वो दाता एडा वड्डा है, फिर उन छड़ के किसी पासे नहीं जाएगा। सतगुर पूरा साह है, तेरे भवन जग तिसदा वणजारा, रतन पदार्थ बेसुमार, भाव भगत दे भरे भंडारा, पार जात लख बाग विच, दुनिया दे विच अवतारा दी लड़ाई, देवत्या दी लड़ाई, एक पार जात ब्रिज पिछे आ, उन्हां दी पोथियां पढ़ांगे ना ते ए मिलेगा कि एक पार जात रुख दे पिछे लड़ाई हो गई है। लेकिन गुरु नानक साहब दे घर विच जदों तू गुरु नानक सतगुरु नाल जुड़िया, अकाल पुरख जुड़िया, उस दिन कहने उथे एक ब्रिज पिछे लड़ाई नहीं, उदे घर विच पार जात दे बाग लख, काम धीण दे वग हजारा, जम दगनी दी ते सहंसर बाहू दी एक गऊ पिछे लड़ाई हुई, काम धीण गऊ पिछे, पर उदे घर विच लखां काम धीण दे वग ने, लखां पार जात दे बाग में लखमियां लख गोलियां, तू कहियत है आद पवानी, मुक्त की बरिया कहां छपानी, ते गुरु को जान दी पह जान दी लोड़ी। गुरु को गया, गुरु की शरण विच आया, गुरु ने आख्या आ मैं तेन ओदे घराने जोड़ा, हुण तू गुरु की शरण च आ गया, आज तू बाद तू खालसा है, तेनू एक कहण दी लोड़ नहीं पई मैनू मुक्ति कर दे। गुरु ने आख्या तू खालसा है, ते खालसा की खालसा अविनाशी है, बाकी सब चरासी है। जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रची आ रहा है, तेरी खालसे दी अरदास पता नहीं किन्निया थावां च हो रही है। सच्चे पातशाह जिथे तेरा खालसा है उथे तू आप ओदी रक्षा करी, खालसे नू रहत बख्शी। लखमियां लख गोलियां, पास दे पर्वत अपारा, लोकी एक पास पास छिले कटदे आ, लेकिन तेरे घर विच आउण नाल पता नहीं किन्ने क पास पर्वतां दे पर्वत ने। जितड़े फल मन बाछीए तितड़े सतगुर पास, पूर्व लिखे पावने, आ गल घुंडी वाली है भी पूर्व लिखे पावने, इत्थे बब्बे नूं सियारी लगी हुई है, उन्हें लिखिया है कि मेरे घर विच फल सारे हैगे आ, लेकिन जे तू लेना चाहुंदा है ना तो मैं ये लिखता है कि तेनू मेरे घर विच रास देनी पैनी, वो रास की देनी पैनी है। पूर्व लिखे पावने सच नाम दे रास, उदे नाम दी जिनी रास देगा भाई साहब भाई नंद लाल जी, ई हमा दौलत अज, जिनी तेरे को दौलत है, शरीर है, धियां पुत्र है, धन दौलत है, ये किन्ने तेरे को, ई हमा दौलत अज बंदगी सत, जिनी तू बंदगी की, जिन्ना तू पैर में जुड़िया ही तेन उन्हें उदू घट नहीं लिता पूरा, उन्हें तेन दे दिता है, पर जे तेरा जीवन हुण बिंदगी तू बना बीत गया, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी सत, जे तेरी होने वाली आ जिंद जेड़ी जिंदगी है, ये बंदगी तू बिना बीत गई तो याद रखी कल शर्मिंदगी ना मुंह मेड़ा फरेगा, ते बंदगी उस अकाल पुरख दी है। इस वास्ते भी मेरा ओ वाहिगुरु बहुत विचार समा नेड़े हुंदा, गुर ईसर मेरा शिवजी, मेरा गुरु है, मैनू किसे शिवजी दी लोड़ नहीं, गुर गोरख मेरा विष्णु, मेरा गुरु परमेश्वर है, मैनू किसे विष्णु दी लोड़ नहीं। अगे थोड़ा जाना खाम खा झगड़ा हुंदा, कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं है, एक सज्जन विश्राम लाउंदे आ
ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਏ, ਉਧਰ ਲੱਗ ਜੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਫਰਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਜੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਏ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮੇਰਾ ਵਰਮਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਥੋਂ ਕਿ ਕਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਿਖਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਵੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਇੱਕ ਦੱਖਣਾ ਉਹ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

वाहिगुरु वाहिगुरु ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ने तिहाय बिरंगत गुरु की अमरदास राम दर्शन सहाय अर्जन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस डिठे शब्द बजाए तेग बहादुर सिमरिया करनो निध आवे दाई सब ताई हुवन साधु श्री पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुवन साधु श्री पातशाह दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ तरतन दीदार दा ध्यान दर कर बोलो जी श्री वाहिगुरु गुरु सिखा दा मन देवा मत उचे मत पता राखा पु वाहिगुरु ए अकाल प्रपंत जामे अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जियो श्री ननकाणा साहिब ते गुरुद्वारिया गुरुताम तेरा तो पंथ नो विछड़िया गया कुले तरतन दीदार सेवा संभालता दान अपने प्यारे खालसा पंथ नो बख्शो हे निमानिया दे मान नितानिया दे तान योटिया दी योटनी आसरिया दे आसरे तन तन त्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज से पातशाह जियो आप जी दे चरणा कमला विखे अरदास बेनती जोगी उच्चे पातशाह आप जी ने महान अपार बख्शी दिती अच्छे पासी अमृत वेले तो लैके इस वेले तक समूह संगता अनुकूल दर्शन दीदारे बख्श के निहाल निहाल किया उपरंत जे पासे इस वेले आप जी के पवित्र दीवाना की समाप्ति तो उपरंत सोहले साहब जी के पाठ किते बाणी प्रजम के पासे आप जी की सेवा संभाल कर जा हुई भुला चुका दी कि मां कनी अगे तो सुध ते सपट बाणी परंदा बाल उदम बख्शिश करना बाणी पढ़ी सुनी सचित प्रवान करना बाणी ता भाव दर आई साध सिंह दे हृदय विच पटावना दर आई साध सिंह दी हाजरियां लिखे लावन तिलपुल भेटा मधुर ते प्रवान करनिया संगता नूं अपने चरणा नाल जोड़ के रखना अपने नाम दा वासा बसिश करना सतगुरु जीओ घर दे विच सुख शांति वरतावनी सदाई चढ़दियां कलां विच बख्शिश करना सतगुरु जीओ कारोबार विच वादे बख्शिश करने खजाने भरपूर करना चे पासी इस वेले आप जी दे सुखासन ते आरन चे पासी संगतां सेवादार आप जी दे चरणा विच हाजरन चे पासी आप जी चाले पाउन की कृपालता करो सही प्यारे मिल च नाम जपचे नाम चिति आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने वाहिगुरु जी का खालसा

जुगाद गुर नमः, सतगुर नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास बिसंबर एक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुधाख्यर, किने राम नाम एक आख्यर। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुख मने सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरण साध कै संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरण रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरण ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरण बिन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरण बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरण तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरण दरगाह मानी। प्रभ कै सिमरण होए सो भला, प्रभ कै सिमरण सुफल फला। से सिमर है जिन आप सिमराए, नानक थाक लागो पाए। प्रभ का सिमरण सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरण उधर ही मूचा। प्रभ कै सिमरण तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरण सब कीश सुझै। प्रभ कै सिमरण नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरण पूर्ण आशा। प्रभ कै सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन प्रवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से बेमुहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बस है हर नेरे। संत कृपा ते आन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कब हुना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमर है से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहु कुंड जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकार। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दल, तय केवल नाम संग तेरा चलै। जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै।
गुरमुख नाम जपहौ मन मेरे, नानक पावह सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंध ना परै, हर का नाम जपत निस तरै। अनेक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जिहे मार्ग इहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। अनक बिघन जय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनेक जोन जनमै मार जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौं मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै। ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइयै साधकै संग। जिहे मार्ग के गने जाहि न पोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जिह पैंडा महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को ना जियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महा पयान तापत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर श्याम। जहा त्रिखा मान तुझ अकरख है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कूट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जापत कब परै ना पंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जापत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात ए हर को नाम, कामतहीन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल काश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमय कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमी फिरै चैर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै। अग्न माहे होमत परान, कनक अश्व है वर भूमदान। न्योली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, ताओ पी होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जापत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटाए, गर्भ गुमान न मन ते हुटाए। सोच करे दिन स अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू न बिखिया टरे। जल धोवै बहु देह अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै, अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। भेख अनेक अग्न नहीं बुझै, कूट उपाव दरगै नहीं सिजै।
छूट सनाही ऊभ पयाल मोहे ब्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जाम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी सोभा लोरै साध संग इहो मैं छोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिए सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल किरीना हर हर नाम तिन घाट घाट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन कौ धन तेरो नाउ निथावे कौ नाउ तेरा थाउ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा कौ देव दान करण करावन हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गात मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मैं उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिह घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार यान्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सुवार सिगारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया बार बविस्था तुझे प्यारे दूध पर जीवन भोजन सुख सूद बिरध भया ऊपर साख सैन मुख अपयाउ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कशु न बूझै बख्श लेहो तव नानक सीजै जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सोत प्रात मीत बनता संग हसै जिह प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिह प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग सास बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसै त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काड लिहो प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निध पावै तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर साध सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसै बिसारै मुगद अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छूट झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तोए गर्तब प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शपश नाहे कश करै छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे करै अथा जाकै अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लेहो ओड़ निभावै कहा बुझारत बूझै डोरा निस कहिए ताओ समझै पूरा कहा बिसन पद गावै गूंग जतन करै ताओ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै न चीत जो बै राई तास्यों प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मन है प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहु जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म
तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरा सुप्रतहारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत में तो तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सलोक दीन हार प्रभ छोड़ कै लग हे आन सुवाए, नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावै, एक वस्तु कारण बिखोट गवावै। एक पी न दे दस पी हैर ले, तौ मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजै साधनम सुकारा। जाकै मन लागा प्रभ मीठा, सर्ब सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्ब सुख नानक तिन पाया। अगनत साहु अपनी देर आस, खात पीत बरतै आनंद उलास। अपुनी अमान कछ बहुर साहु ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुरुष का विश्वास न होवै। जिसकी बस्त तिस आगै राखै, प्रभ की आज्ञा मन माथै। उसते चौगुण करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनेक भांत माया की हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावै, ओ बिन सह ओ मन पछुतावै। जो दिसै सो चालन हार, लपट रहयो तह अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावै नेह, ताको हाथ न आवै केह। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन तन कुटंब सबाया, मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अशुभ बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस थिर भगत साधकी सरन, नानक जाप जाप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पार निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरहे। मिथ्या नेत्र पेखत परत्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावै है, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै है। मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जिह घट बस्यो, हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर काश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत। जानन हर प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू कीन। अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिसकै अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपै है मानै। आपै है आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस भावै तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर रहया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जाप नानक हरि। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहंगमेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जिह प्रसाद सुगंधत तन लावे है, तिस को सिमरत परमगत पावे है। जिह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिस है त्याय सदा मन अंदर। जिह प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमर हो तिस रसना। जिह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जिह प्रसाद पाठ पटंबर हडावे है, तिस है त्याग कत अवर लुभावे है। जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जा सगावी जय।
जे प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताकु जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावह नानक पात सेती कर जावह जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावह तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल शिदर ठाकी मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझ को न पहुँचै मन सास सास सिमरहु प्रभ ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करेहि जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन तिस प्रभ को कबहु न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राखपुर रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत साध तिस है त्याई तिस है त्याई जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद कर है पूर्ण बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सासा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुनहै करण नाद जे प्रसाद पेखै बिसमाद जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवरकत लागहु गुरु प्रसाद नानक मन जागहु जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल न मनहु बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताकौ जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे ते सहे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावह साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सु प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लावहु तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनु हर बैन साध कै संग न कतहु तावै साध संग आस थेत मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यों नहीं बैर साध कै संग ना बीगा पैर साध कै संग नाही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचर लै है साधु कै संग अजार सहाय साधु कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुचै साध कै संग दृढ़ै सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध कै संग न सब कुल उधारै साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब ने सुतारै साधु कै संग सो तन पावै जिस तन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन
साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछु काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलूकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग ईहां ऊहां सोहेला, साध संग बिशुरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संयोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार पूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पहाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, आवर न पेख है एक सुबिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का इह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र सुमान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रास ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजहे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाया दियाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। सलोक उरतार है जो अंतर नाम, सर्व मै पिख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपारस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। परत्रय रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत।
करन ना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिख्या पर हरे मन की बात सुना मन ते तरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कूट मधे को ऐसा अपरस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिस्न की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवे नेह कर्म तिस

ਸਰਿਉ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਿਆਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪੈ ਸਾਧ ਸਾਧ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਆਪੋ ਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾ ਸਾ ਸੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲ ਹਾਰਨ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁੱਖ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤਿ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪਸੋ ਅਮੀ ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨ ਜਾਣਤ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੈ ਭੂਲਾ ਦੈ ਦਿਸ ਤਹਾਵੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰੇ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗੇ ਆਕਾਰੀ ਬਪੂਰਾ ਜੀਉ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਉ ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਫ ਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬਹੂ ਊਭ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਹੂ ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬਹੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨੇਕ ਜਿਉਂ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸੁਆਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛੁ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨ ਕੋ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ
खिन मैं होए जाए पसमंत किसे न बदय आप अहंकारी धर्म राय ते सुकरे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हों तारे श्रम पावे सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ता की निर्मल सोए जब लग जानै मुझते काश होए तब इस कौ सुख नाही कोए जब ए जानै मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता जब तारै पू बैरी मीत तब लग नेह चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय ते सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हों छूटै सहस खटे लख को उठ तावै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग बिख्या के करै नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए कारण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कारण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो के शकीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखा करै बबेक आपे एक आपे अनेक मरै ना बिन सै आवै न जाए नानक साध ही रहया समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सब के साथ आप कीनो आपन बिस्थार सब का शुषकाउ करने हार उसते भिन कहो किश होए थान थनंतर एक सोए आपो ने चाले तो आप करने हार कौतक करै रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सात सात सात प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुख न आर जा कटै संत कै दुख न जमते नहीं छुटै संत कै दुख न सुख सब जाए संत कै दुख न नरक मै पाए संत कै दुख न मत होए मलीन संत कै दुख न शोभा ते हीन संत के हते कौ रखै न कोए संत कै दुख न थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै संतन के दुखन सर्प ज्यों पाए संत के दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए संतन के दुखन तृष्णा मैं जलै संत के दुखन सब को शलै संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे संत का निंदक महा आतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक कौ सर्व रोग संत के निंदक कौ सदा बेजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत भावै ता उसका पी होई मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी कहो ना ही ठाओ नानक संत पावै तन लय मिलाए संत का दुखी अद बीच दे टूटै संत का दुखी कित काज न पहुँचै संत के दुखी कहो उद्यान प्रमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी यंत्र ते थोथा ज्यों सास बिना मृत की लोथा
संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे। संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत भावै तां लै उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावुक ईधन नहीं तरपै। संत का दुखी ही छुटै अकेला, संत ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरै ना जीवाइए। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा भावै तैसा कोई होए। पया किरत न मेटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करहु दिन रात, तिसे त्यावो सास की रास। सब काशु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जान से। सलोक तज हो सियानप सुरज नहो, सिमरहो हर हर राय। एक आस हर मन रखहो, नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मानुख की टेक वृथी, सब जान देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। मार रख है एक आप, मानुख कह किश नाही हाथ। तिसका हुकम बूझ सुख हुए, तिसका नाम रख कंठ पुरवे। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोय। उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। ननहु पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग। चरण चलाओ मार्ग गोबिंद, मिटहे पाप जपिए हर बिंद। कर हर करम श्रवण हर कथा, हर दरगाह है नानक उजल मथा। बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गने संसार। मान तान मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानहु ते सुखी। एको एको एक पछानै, एत उत कियो सो जी जानै। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्ह निरंजन जानिया। गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जास कहै, तो सर्ब रोग त्यो हर जन रहै। तो आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक ते सहै न लागै दुख। जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहिला नहीं डुलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरप्रसाद तत सब बूजिया। जब देखाओ तब सब केश मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै। आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मह आप, अनेक जुगत राज थाप उथाप। अविनाशी नाही केश खंड, तहारण तार रहो ब्रह्मंड। अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उधरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उधारण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण। आपे मेलै कृपाल, गुर का शब्द जप पै निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड़ भागै। नाम जपत पावै बिसराम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग।
सहज सुभाए होवै सो होए, करणे करणे हार पछाणे सो होए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हों बने आए। आप सकाओ आप दिनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जाकै सिमरन उदरीय, नानक तिस बलहार। अष्टपदी टूटी गांटन हार गोपाल, सर्ब जिया आपे प्रत पाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरै किश काम। गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए ना ही मोहै। प्रभ की जोत सगल घट सो है, तनवंता होए क्या को गर्बै। जै सब किश तिसका दिया दरबै, अत सूरा जे को कहावै। प्रभ की कला बिना कहता वै, जे को होए बहे दातार, तिस देन हार जाने गवार। जिस गुर प्रसाद टूटै हौ रोग, नानक सो जन सदा आरोग। ज्यों मंदर को थमै थमन, त्यों गुर का शब्द मन अस थमन। ज्यों पखाण नाव चाढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लागत निस तरै। ज्यों अंधकार दीपक प्रकाश, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यों महा उद्यान मह मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै। तिन संतन की बादशाह तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसै चितार। जो काश करै सोई सुख मान, भूला काहे फिरै अजान। कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ताज अभिमान लिहो मन मूल, राम नाम हृदय में तूल। लाद की बसंत संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए। इहो वापार विरला वापार है, नानक ताकै साध बल हार है। चरण साध के धोए धोए पियो, अर प्रसाद को अपना जियो। साध की तूर करहो इसनान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनेक बिघन ते साधु राखै, हर गुण गाय अमृत रस चाखै। ओट गही संत इधर आया, सर्व सुख नानक तेह पाया। मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार। सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लहना पाहे। साब केश तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल ए करनी। कर कृपा जिस को नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनी है ते हुलोए, जाकै हृदय एको होए। सच करणी सच काकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वरतै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। सलोक रूप न रेख न रंग, किश त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न। तिसे बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन महराख, मानुख की तू प्रीत त्याग। तिस ते पर नाही किश कोए, सर्ब निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। स्वाद तेरे की चरणी पाओ, नानक कह मान एहो अनराओ। मन सा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन परन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल साध जाकह, सर्वथोक सुनिए घर ताकै।
राज मैं राज, जोग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया, जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास, नाम त्या वह से तेहो गुण मैं, जाको परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए, ऊंच नीच तिसके अस्थान, जैसा जन आवै तैसा नानक जान।

अष्टपदी पूरे गुर का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमरह गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्याग हो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो हार धन के भर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उद्धार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रास पियो चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमुलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तर लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाक मन लागा हार रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महा तो कह माथे नानक उदरे तिन कह साथे सारन जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरीन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होए सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तहारी नानक निब ही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो हो तिने धान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवै आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिस प्राप्त होए खेम शांत रिद नाव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुम बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कूट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊच ताकि शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते ऊच ताकि शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी।

बोलन बोलिए जित सुनतरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक इवे जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुनी निदान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हाओ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विण भाने के नाय करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जी कबुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग जारे यार जा होर दसूनी होए नवा कंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा ना और खाई कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे तेहा कोई न सुझै जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरना सुनै धरत धवल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहि न सकै कार नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का ना सुनै ईश्वर ब्रह्माइंद सुनै मुख साला हनुमंद सुनै जोग जुग तन भेद सुनै शास्त्र सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश सुनै सत्संतोख ज्ञान सुनै अठसठ का स्नान सुनै पढ़ पढ़ पाव है मान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगा सुनै दुख पाप का ना सुनै सरा गुणा के गाह सुनै से

मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का वह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कुए। मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मुह चोटा न खाए, मन्ने जम कह साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जिको मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पातशों प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सिती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जिको मन जाने मन कोए। मन्ने पावे मुख द्वारु, मन्ने परवार ऐसा धारु। मन्ने तरे तरे गुरु सिख, मन्ने नानक पवे न पिख। ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दर गहमान। पंचे सोह है दर राजान, पंचा का गुरेक त्यान। जिको कह करे विचार, करते कह करने नहीं सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख था रखिया जिन सूत। जिको बुझे हो वह सचियार, तबले ऊपर किता पार। धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सपना लिखिया बड़ी कलाम। हो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया किता होए। किता तान सवाल हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। किता पसाओ एकु कुवाओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद पावे साई।

आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रित सिदवरा साध। संजोग जोग दो कार चलाव है, लिखे आव है भाग आदेश से आदेश। आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत वे आई तीन चेले प्रवाण। एक संसारी एक भंडारी कलाए दीवान, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव हुवै फुरमान ऊ विकै उन्ना नदर न आवै। बहुता हो विडानु आदेश तिसै आदेश। आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, आसन लोहे लोहे भंडार जो

जोर न जुगती छुट्टे संसार जे सात जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती तिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कछ पकाई उत्थै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काय आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे काढ़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कूड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै काढ़त घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जी को कह पिछे पछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन महराम रहा भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उहे मरहे न ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै केलो करह अनंत सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जी को कथै तंत अनंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार भौख लागन तपताऊ भांडा भव अमृत ढाल घड़ी है शब्द सच्चे

अपीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजेय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, निर्लीक हैं, अलीक हैं, निर्सीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, असूक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, भुजम प्रया छंद, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदानी, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद वादे, अनंगी अनामी समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथी समस्ती बेपूते कलंक बिना निकलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणी, नमो अस्त्रमाणी, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेते वेशु धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी, अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अदो उर्ध अर्धं अगंग ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अचेदी अपेदी अनामंग कामं, समस्तो पराची समस्तस्ततामं, तेरा जो चाचरी छंद, जले हैं तले हैं, अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रया छंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्तुंग निरनाथे, नमस्तुंग परमाथे, नमस्तुंग गंजे, नमस्तुंग पंजे, नमस्तुंग काले, नमस्तुंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृश्यं, नमो सर्वकृष्णं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी, चरपट छंद त्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्म अंगल कर्म, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं, सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवं सर्वंग पेवं।

आप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व सवृच्यो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सु परम रहत भूत लख अभे संग रंग नरंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दायक आमाप रूप अमीक अनुष्ट तेक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजनाद रूप असूत अंग हीन अपांग नात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेट सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नित भागत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चिवेचित मत पार चंद्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार असन भंग उपमा अनांगन भव प्रकाश निश्चिन अनाथ आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अभा अपांग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदर्श धर्म सर्वा प्रनाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी छंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रिया चंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अतिशय अदृश्य अकृश्य भगवती चंद्व प्रसाद कथते के आ चिज देश के आ पिज पिस के आ गंज कर्म के आ पंज भरम के आ पिज दुख है के आ दित सुख है के अवधूत वर्ण के विभूत करण के राजिंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्व अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अदेव है के आप अपीव है कि चित्रंग बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रहा कह कि पाक पे ऐब है कि गै भूल गैब है कि फूल गुना है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फहीं में के आकल आला में के साहिब कला में के हुस्न अल वजू है तो मामूल रुजू है हम ईश्वर सलाम में सलीखत मुदा में गनी मुल से कस्त है गरीब उल परस्त है बेलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम में रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम में रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपांग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है
निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओअंगाध रूपे अनाध स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध्ये अगंजे अगाधे सुबंग सर्वभागे सुसर्व अनुरागे त्रिपुवत स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, ये नरकं प्रणास है, पृथ्वल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विपुगत स्वरूप है, परयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, परयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अभंग है, अनंग है, अभेद है, अलेख है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अवय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंद है, अबंध है, अभगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित्य है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल चंद्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं सरीके मितु अमीके सदैवं प्रभाय अजय है जाय भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमी सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी ध्यान दे के राजक रहिंद है करीमुल्क मालक हुसन जमाल है गनीमुल्क राज है गरीबुल निवाज है हरिभुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनाश है समस्तुल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं परनाश है बहस्तुल निवास है कि सर्बल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदिशल अलिख है हमेशल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो बेपूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मदपार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पंजु अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपवनाश मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जलथल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा पार गतमित उदार जलथल अमंड दिस्विश अपंड जलथल महंत दिस्विश बेअंत अनपवनास त्रेतर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकारा कथनी अनाथ खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित्चरण नाम अनछिज गातु अजिज न बातु अनचंज गातु अनरंज बातु अनटुट भंडार अनडट अपारा डीठ कर्म अत ठीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर भूल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालया है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से है पार्थि पर है करुणा कर है जपा जप है थपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निर्पनायक है सर्पायक है
पाव भंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकनं कृत है, सर्वा कृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस की जस है, भुजंग प्रया छंद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अचरी छंद। अजय अलय अपय अभय, अपू अजु अनाश अकाश, अगंज अपंज अलख अपख, अकाल दयाल अलिख अभिख, अनाम अकाम अगाह अटाह, अनाथि प्रमाथि अजो नियमोनि, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे, भुजंग प्रया छंद। नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, निर्कामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते, सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी, करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजाय विपूते गजाय गनिमे, हरियं करियं करिमुल रहीमे, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते।

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारी भारी भजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे इति भय तु कहा पै भूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ के जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पर श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे।

जति जतार सुबह सुबिचार हजार के दिखे श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत्ती बिन एक न लिखे शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोरा रिन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे आर बचार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मुवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिरनायक जाचिक नेक सुवेक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविक भुवान जपेंगे जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बुपुंज खपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र जिंदर निराध भजोंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्री वी जे नर श्रीपत के प्रस है पगते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भक्त्यान लगायो नाथ फिरो लिए सास समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बास की उब ख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज करियो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में है काहू पछा को शीश निवायो ओ बतान को पूजत है पस ओ मृतान को पूजन तायु कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान।

क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दे मुहे बचाव हो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कौवा संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बरचाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री आस तुझ यू कर हो रक्षा, राख ले हो मोहे रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा,

जवन काल सब लोक सुवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव तै जछिन उपजायो, आदंति कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह भद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम।

जाकू भीव न पावत बेदा ताको कृपान अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेहु आप अपनी बुद्ध है जीती बरनत भिन्न भिन्न तुह थेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिसजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेर जसे तजकिनी पुत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पै शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचम पाहु आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाहु आगो रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रनकाता जी अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हरे हो रित सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छव सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख

हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को छय करता, श्री आशुतोष जप भये दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछित फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई अडिल, सुने गुंग जो याहि सुरसना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाव निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह सहस पुनी जय, अर्थ सहस पुन तीन कही जय, पाद्रव सुधि अष्टमी रवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा, सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान ने कहमते के न मान्यो, श्री स्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो, दोहरा सगल

जन जागे जिन हर मन वसिया बोल है अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु मन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनु क्यों विसारी है वड़दाता जी अगन में आहार पहुंचावे उसनु क्यों कोई न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया माया गुण सब इको जी करता खेल रचाया जात इस भाणा ता जमिया परवार भला पाया लिव चुटकी लगी तृष्णा माया मरवरताया ए माया जितर विसर मोह पजै पाओ दूजा लाया कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हरे आप मुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसै विटहु रहे लोक बिललाए ऐसा सत गुरु जी मिले तिस नौ सिर सौपी है विचो हुआ बजाए जिस दा जीव तिस मिल रहे हर वसै मन आए हरे आप मुलक है भाग तिना के नानका जिन हर फुलै पाए रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुर तेरास जानी हर हर नित जप्यो जी हो लाह खट्यो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हरे आपे भाणा कह नानक रास मेरी मन हुआ बनजारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बौड़न तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिलै जिस आए कह नानक होर अनरसा विसरे जा हर वसै मन आए हे शरीरा मेरे हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हरे आपे माता आपे पिता जिन जीव पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत रखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभा गुम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल नि सखिए सुख दुख न व्यापे गुरु चरण लागे दिन सुभागी अपना फिर जापे अनहत बाणी गुरु शब्द जानी हर नाम हर रस भोगू कह नानक प्रभा मिलया करण कारण जोगोए शरीरा मेरे ऐस जग मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मैं आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक क्यों शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया हे नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन वरना देखो कोई हर बिन वरना देखो कोई नदरी हर निहाल आए संसार तुम देख दियो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक हर बिन वरना कोई कह नानक नितरंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई हे श्रवण हो मेरे हो साचा सुनना नो पठाए साचा सुनना नो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस मानी सच लख विडानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचा सुनना नो पठाए हार जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनीक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नवनित तिष्ठांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया एहु साचा सोहेला साचे कर गावहू गावो ता सोहेला कर सच है जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जात तु पावे गुरमुख जिना बजावे यो सत सबना का खसम है जिस बख्शे सूजन पावे कह नानक सच सोहेला सच्चे कर गावे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते

बिनवंत नानक गुर चरण लागी वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मत उच्ची मत पद दे रखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दतार जीव। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शिश करो।

चवर शत्र तखत मालक धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने कृपा रहमत बख्शिश की समूह संगत नूं अमृत वेले दे जागने बख्शिश की अमृत वेले पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके आप जिया ने दर आईया संगतां नूं दर्शन दीदार बख्शिश की आप जी का कोटान कोट धन्नवाद सतगुरु जी आप जी की कृपा सदका पावन सुंदर दरबार सजे सजे दरबार अंदर आप जी की अमृतमयी बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ नितनेम बाणिया दे पाठ होए गरीब नवाज अगाध बोध बाणी पढ़दियां होईयां बेअंत बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना रहमता करनिया सिर ते मेर भरिया हथ रख के बाणी शुद्ध स्पष्ट पढ़न सुनन विचारण दी दात समूह संगत नूं प्रदान करनी जी सतगुरु जी बेअंत संगतां ने अमृत वेले आप जी के चरणा विच हाजरियां भरियां तिल फुल पेटावा माया अर्पण कीती रहमत करनी समूह संगत दी हाजरी दर ते प्रवान कर लेना दरों घरों नामदान गुरु सिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना किरत कमाइया विच वाधे पाउणे घर परिवारां विच सुख वरताउणी बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना गुरु सिखी दी दात विद्या दी दात देश कौम दा प्यार बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जी बेअंत संगतां ने मीडिया दे माध्यम राही हाजरियां भरियां सेवावां भेजियां गुरमत अनुसार सबना दियां मनोकामना मनोभावना संपूर्ण करनिया सबना नूं दरों घरों नामदान गुरु सिखी जीवन बख्शिश करके नवाजना तन मन धन दे नाल कीतियां सेवावां थाएं पाउणियां गरीब नवाज अपने टहलियां नूं रहमतां करनियां काम क्रोध लोभ मोहंकार तो बचाउणा श्रद्धा भावना प्रीत वसै दर घर दी सेवा दे योग कर लेना गरीब नवाज कृपा करनी रहमतां करनियां सदा अंग संग वर्तना कारजां विच सफलता बख्शिश करके नवाजना रहमतां करनियां गरीब नवाज आप जी दी कृपा सदका चार पैरैन सुख भाणे अंदर बतीत हुई है दिन चढ़े अपने भाणे अंदर बतीत करवाउणा सतगुरु जी कृपा करो आप जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद ही दे हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते पावन पवित्र असीस रूप विच हुक्मनामा साहिब बख्शिश करके नवाजो हुक्मनामे ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो अखरवाद घाट भुल चुक मुआफ करनी सरबत दे कारज रास करने सेई प्यारे में जिन्ना मिले आप जी का नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

हम राव रहया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मानिया जिन जल थल त्रिभवन घट घट थापिया सो प्रभु।

मार्ग पंथ ना जानू विखड़ा, क्यों पाइए फिर पारे सतगुर शब्दी मिले विछुन्नी, तन मन आ गै राखे नानक अमृत बिरख महा।

गुर अलख लखाया अवर ना दूजा भाले। गुर अलख लखाया जा तिस पाया, जा प्रभ

आई। हम सतगुरु विटहो कुमाए, हम पाथर गुरु नाव, बिक भव जल तरिए राम। गुरुदेव शब्द सुभाए, मैं मूड निस्तारिए राम। हम मूड मुग्ध किच मित नहीं पाई, तू अग

हर हर अगम अगाद अपरंपर अपर परा जो तुम त्यावह जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा बिखम पाओ तिन तरिया।

हर कृपा कर धरणी धरा, हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगहा अथाह तू कट कट पूर रहया, तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लहया। धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हार नित चवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोलह, जा खड़े गुरमुख हर हर कहया। तुम स्वामी अगम अथाह तू घट

पा सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित एक

जिन जपया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी, तिनके उजल मुख हर द्वार। कोई हलत पलत जन भई सुहेले, हर राख लिए रखन हार। हर संत संगत जन सुनो भाई, गुरमुख हर सेव

वाण त्रिण त्रिपावन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चब है हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो धन धन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे सो सफल दर्शन देहु करते जिस हर हृदय

श्री भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी किस मिल है जिसके मस्तक गुर हाथ किस हृदय हर गुण टिक है हर गुण हृदय टिक है तिसके हर गुण हृदय टिक है तिसके जिस अंतर भाव

दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया, गुरदर्श पाया अज्ञान गवाया, अंतर ज्योत प्रगासी जन्म मरण दुख

खिन खिन निमख विखा, हर हर भगत बनी प्रभ केरी, सब लोक वेखण आया, जिन दर्श सतगुर गुरु किया, तिन आप हर मेल आया, तीरथ उद्यम सतगुरु किया, सब लोग उदरन अर्था, मार्ग पंथ चले गुर सतगुरु संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ, खबर भई संसार आए त्रै लोआ, देखण आए तीन लोक, सुर नर मुन जन सब आया, जिन परसिया गुर सतगुर पूरा, तिनके किल विख नास गवाया, जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए, जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए।

आड़ दाम किछ पया न बोलक, जागातिया मोहन मुंदन पई, भाई हम करह क्या किस पास मांग है, सब भाग सतगुर पिछे पई, जागातिया उपाव सियान कर विचार डिठा, भन बोल का सब उठ गया, तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया, मिले आए नगर महाजना, गुर सतगुर ऊट गही, गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही, सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता, सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया, देही नगर कोट।

अविनाशी अभिगत स्वामी पूर्ण पुरख विधाते पुस्तक कह न जाए तुम्हारी कौन कहे।

बिसरी त्यास बिडानी, अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी, देख दमोदर

अशांत मूर्ख अंध कोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गलवड अशांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे फिर अशांत मलेच मार पाए अशांत

सोहन पंच प्रवान नदी गर्म सोवे कच्छ खाई उत पाए नानक गया कर्म खंड का।

निष्काम निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आए सदाए अशांत मलेर माल पाए अशांत निंदक करें पाप नानक नींद कहें

साक्ष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाए शांत पापी पाप अशांत मूर यार अशांत मलेश मार पाए अशांत निंदक।

0: पे जाए ए साला जी साला है इतनी नदियां पे बाहर कौन सोम ना जान समुद्र सा सरदा गिरी कुल नौनी
1: अंत न सुनी कहना अंत न करना देना अंत न देखना सुन।

निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आ करे फिर अशांत मलेच माल पाए अशांत

आपे धरती साजन आपे आकाश विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास जन नानक नाम त्याय तू सब किलविख कटे तास पौड़ी।

नित खोट कमावे है ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए। जा सतगुर सराफ नदर कर देखे सुआग वीर सब उगड़ आए। ओ जेहा चितवह नित

का वचन ऊपर आया। गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की, मन मुखा हो वेला हथ न आया पौड़ी।

सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोह फिके। ओह बोले किसे न भावनी मूं काले सतगुर ते चुके श्लोक महला चौथा। हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसा।

जमाया। तिनका काड़ा अंदेसा सब लाहियो न जिनी सतगुर पुरख ते आया। जन नानक नाम राध्या आप तरया सब जगत तराया। महला चौथा। सारा दिन लालच अट्या मनमुख होरे गल्ला। राती उग्या दब्या नवे सोत सब ढिला। मन मुखा दै सिर जोरा अमर है नित देव हे भला। जोरा का आख्या पुरख कमाव दे से अपवित अमेघ खल्ला। काम व्यापक सुद नर से जोरा पुछ चला। सतगुर के आख्या जो चले सो सत पुरख पल पल्ला। जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिल्ला। सब तेरी बनत बनावनी नानक पल पल्ला। पौड़ी। तू वे परवाहो अथाह है।

गुर सतगुर का जो सिख अकाए सो पलके उठ हर नाम ते आवै उदम करे पलके प्रभाती स्नान करे अमृत सरनावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल विख पाप दो।

सगवी मल लाए मनमुख आया, पराई जो निंदा चुगली नो बेमुख करके भेजिया, ओथे भी मुह काला दुहां बेमुखा दा कराया। ताड़ सुनिया सप्त जगत विच पाई, बेमुख सने नफरे पौली पौधी फावा, होए कै उठ कर आया। अग्गे संगति कूड़मी बेमुख रलना, ना मिले ता वहटी भतीजी फिर आन कर पाया। हालत पलत दोवे गए नित भुखा कूके तिहाया, धन धन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सच बह आप कराया।

सब उपाया महला चौथा। साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिस दा नफर किथो रज खाए। जे साहिब कै घर वत होवे सो

प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुनंदे सुख न पायन मुग्ध नर संत नाल खहंदे ओए लोच

अंद नाम जपोह गुर सिखो हर करता सतगुरु करी वसाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए। गुर सिखा के मुंह उजले हरे गुर सिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए। जन नानक हर का दास है हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच सहा हमारा।

तू सच्चा साहेब लख है गुर शब्द लखारे श्लोक महला चौथा। जिस अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे न होवी भला, उस दे आख्या कोई न लगे नित उजाड़ी पुकारे खला। जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता कराया उस दा सब गया, नित चुगली करे अणहोदी पराई मुंह कड न सके।

ओए अज्ञा कुस्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर तिनका दर्शन ना करहो जो दूजे पाए चितलाही। तुर करते आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही। नामे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही। महला चौथा जे होंद गुरु बह टिक्या तिस जन की वड्याई वड्डी होई। तिस को जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई। तिस को खंड ब्रह्मंड नमस्कार कर है जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई। गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई। जन नानक हर करते आप बह टिक्या आपे पैज रखे प्रभ सोई पौड़ी। काया कोट अपार है अंदर हट नाले गुरमुख सौदा जोकरे हर वस्त समाले।

से उज्जड़ परम भवाई है जो चाड़ मिर्ग पाले श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खूह है ओथे पकड़ ओह टोया। कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होय होय रोया। उन

पौड़ी। सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर तारिया, सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरो मन साधारिया, बलिहारी गुर अपने सदा सदा घुम वारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया, श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेलियन मुख गुरमुख नाम त्याई सी, सो करे ज सतगुर भाव सी गुर पूरा करी वसाई सी। जिन अंदर नाम निदान है तिनका पाओ सब गवाई सी, जिन रखण कहो हर आप होए होर केती चख चख जाए सी। जन नानक नाम त्याए तू हर हालत पलत छुड़ाए सी। महला चौथा। गुरसिखा के मन भाव दी गुर सतगुर की वडियाई, हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म चढ़ाई, गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आण निवाई। जिने डिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई, हर दरग है ते मुख उजले बहु शोभा पाई।

जिन्ना अंदर उमर थल सही जानन सूलिया हर जाने सही बिरहो हाओ तिन विटो सद घुम कोलिया हर मेलो हो सज्जन।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे ज्यो उपली मजीठे रंग गह गहा त्यो सच्चे नो जियो दे रंग चुलूले।

हर साकत सेती संग न करियो ओए मारे सिरजन हारे जिसका इहो खेल सोई कर वेखै जन नानक नाम समारे महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उरतारिया सतगुरु नू अपड़ कोई न सकई जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़ग संजोग हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया सतगुर का रखन हारा हर आप है सतगुर के पिछे हर सब उबारिया जो मंदा चित वै पूरे सतगुरु का सो आप उपावन हारे मारिया एह गल होवे हर दरगह सच्चे की जन नानक अगम विचारिया पौड़ी सच सुत्या जिनी अराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हाओ बलिहारी तिन को जे अन्य दिन सच लवे जिन मन तन सच्चा भावदा से सच्ची दरगह गवे जन नानक।

की मन भुख है, मन तृप्त है, हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानी है, दिन राती जिन बनाया, सो सच सला

मनमुख अहंकारी महल न जाने खिन आगे खिन पीछे सदा बुलाइए महल न आवे क्यों कर दरगह सीजे सतगुर।

होए मरसन बोट, नानक को गुरबख्शिया नामे संग जुट। श्लोक महला चौथा। तपा न होवे अंधरो लोभी, नित माया नो फिरे जज माल्या। अगो दे सद्या सत्ते दी पिख्या लए, नाही पिछो दे पुछताए। के आण तपे पुत विच बहाल्या। पांच लोग सब हसन लगे, तप्पा लोभ लहर लै है गालिया। तिथे थोड़ा तन वेखे, तिथे तपा फिटे नाही। तन बहुते डिठे तपे धर्म हारिया। भाई एहो तपा न होवी, बगला है बह साध जना विचारिया। सत पुरख की तपा निंदा करे, संसारे की उस्तति विच होवे। एहो देखो तपा दया मारिया। महापुरखा की निंदा का वेख, जे तपे नो फल लगा। सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचा नो उगा कर वे खालिया। धर्म राय जम कंकरा नो आख छड़िया, एस तपे नो तिथे घड़ पाहियो। जिथे महा महा हत्यारिया, फेर एस तपे देह मुह कोई लगो नाही। एहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दर वर्त्या, सो नानक आख सुनाया। सो पूजे जो दे सवारिया। महला चौथा। हर भगता हर आराध्या, हर की वड्याई। हर कीर्तन भगत नित गाव दे, हर नाम सुखदाई। हर भगता नो नित नावे की वड्याई, बख्सियन नित चढ़े सवाई। हर भगता नो थिर करी बहालियन, अपनी पैज रखाई। निंदका पासो हर लेखा मंगसी, बहु देहे सजाई।

अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर सोभा महा उत्तम बाणी। जय पुरख सुनै सो होए निहाल।

चढ़ बोहित भौजल पार पाओ पौ महला पंजवा। वाऊ संदे कपड़े पर हर गर्भ गवार नानक नाल ना चलनी जल बल होए चार पौड़ी। सही उबरे जगे विच सो सच्चे रखे मुह डिठे तिन्ना के जीविए हर अमृत चखे। काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे। नानक चलत न जापनी को सके न लखे श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पा भ्रम फिट पलेरी रुत महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यो सब किछ जिसके हाथ क मित्रा सही कांडी है इक विख न चले साथ पौड़ी। अमृत नाम निदान है मिल पीव हो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई। कर सेवा पा ब्रह्म गुर भुख रह न काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई। तुद जेवड़ तू है पा ब्रह्म नानक सरणाई श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए नानक लथा तिन स्याओ जिना सतगुर भेटिया महला पंजवा। दामनी चमत्कार तो वरतारा जग खे हथ सुहावी साए नानक नाओ जपंदो तिस तनी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम न जानी जो जन भेटे साध संग सो हर रंग माणी।

सत्संत का तो रोते आन कथनी कथिए ब्रह्म ज्ञान पुने पूरा चंद आकाश पसरे कला सहज प्रकाश आद अंत मद होए रेहा खीर सुख सागर में रमे कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बार कबीर जी हो के सत बार बार हर के गावो बार बार हर के गुण गावो गुरगम भेदन हर का पावो रहो आदित करे भक्त आरंभ काया मंदिर मनसा थंब एन सखंड सुरी जाए तो अनद वेण सहज मैं बाए सोमवार ससमर चरे ताकत बेख सगल बिखरे बाणी रो क्यारे द्वार मनमतवार हो पी बनहार मंगण वार लै महतीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जन जाए ना तुर कर रिसे हर आए बुधवार बुध करे प्रगास शब्दे कमल पे हर का आवाज गुरमिल दऊ एक सम तरे उर्द पंख लै सूदा परे बृहस्पत विख्या दे वे हाय तीन देव संग लाए तीन दी तर कुट्टी माहे एन कृष्ण धोवे नाहे सुकृत सुहारे सोए बिरत चढ़े अंधने आप आप से उलड़े सुरखी पंच हो राखे सोवे तो दूजी दिश न पैसे कबे थावर सिरकर राखे सोए जोत की बटीकट में सोए बाहर भीतर पिया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जलब कठमा दूजी आन तोलो महन लाभे जान रमत राम सिवला गोरंग कह कबीरतम निर्मले अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की इको ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारिये राम कहत जन कसन तरे रहो तारी रे गन का बिन रूप कुबजा व्याद अजाम तारिये ले चरण बदक जन देव मुक्त पय हो बल बल जन राम कहे दासी सुजन बिदर सुधामा गुरसैन को राज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन कर्महीन नामे के स्वामी ते उतरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे ग्वारे रे इको ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कम कुटलता जन्म खुवाती रामक सैया जी के जीवना मोहन बसारो मैं जन तेरा रहो मेरी हरो बिपत जनक हो सुबाई चर तो छोड़े शरीर कल जाए घोर वदीत परो तेरी सांबा बेग में लोजन कर नवेलांबा बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं तैठाओ ना तस्वीस खराज न माल खौफ न खतन तरत जवाल अहमो खूब वतन गह पाई ऊहा खैर सदा मेरे पाई रहो कायम दाम सदा पातशाही दोम न सेम एक सो आई आबादान सदा मसूर ऊहा गरी बसे मामूर त्यो त्यो सैर करो जो पावे महरम महल कुको वटकावे कर विदास खलास चमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा। इको ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी पहरा गण रविदास जियो कट अवकट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार रमैये सो एक बेनती मेरी पूंजी राख मरार को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे रहो हों बुणजारू राम को सहज करो व्यापार मैं राम नाम धन ला दिया बिखला दी संसार और वार पार के दानिया लिख ले वाल पताल मोजम डंड न ला गई तजल सर्व झंझार जैसा रंग कुसुंभ का तैसा ए संसार मेरे राम अय्या रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। गौड़ी पूर्वी रविदास जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद ऊप भरियो जैसे दादरा किछ देश वदेश न बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या विमोहया किछ आरा पार न सूझ सगल पवन के नायका इच्छन दर्श दिखाए जी रहो मलन पई मत माधवा तेरी गत लिखी न जाए करो कृपा परम जू कोई मैं सुमत देहो समझाए योगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार प्रेम भगत के कारण है कह रविदास चुमार। गौड़ी बैरागण इको ओंकार सतगुर प्रसाद सत जुग सतेता जगी द्वापर पूजा चार तीनो जुग तीनो दड़े कल केवल नाम आधार पार कैसे पाई बोरे बोसे को न कहे समझाए जाते आवे गबन भलाए रहो बहुविध धर्म न रूपिये करता दीचे सब लोए कवन कर्म ते छूटिये जैसा दे सत होए कर्म अकर्म विचारिये शंका सुन भेद परान संसा सद हृदय बसे कौन हिरे अभिमान
ਬਾਹਰ ਉਦਕ ਪਖਾਰੀਏ ਕਟ ਪੀਤਰ ਵਿਦ ਬੇਕਾਰ ਸੰਤਵਨ ਪਰ ਹੋਈ ਬੋ ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਵਿਦ ਵਿਹਾਰ।

अशांत मूर्ख अंध कोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हृदय कमाए अशांत पापी पाप अशांत नूर यार करे अशांत मलेच मार पाए अशांत

0: Son of God sideways. Take it out completely. Okay. No, you're holding it wrong, Baba. See, the way I was doing it, I was holding it like this sideways. So if it was like this, I could see what I'm doing.
1: You can't go sideways.
0: Why?
1: Because you're in front of me.
0: Oh, no, go. Okay, now it should be easy.
2: Sanasu Arado.
0: That's easy.
2: Haki Pitin Sado, Jake Sangu, Tere Bandhani Chuta. Go Parabamo, Sarmehirte.
0: No, you have to be
2: Kamal Karcharana, our Askaj Patalna Kija. Soi Pagd Gyani Tiani Tapa, Soi Nan Jako Kripa Kija. Go Parabam Sarana, Herde Kamal Charana. Our ask at Patalna Kija, Soi Pagat Gyani Tani Tapa, Soi Nan Vijako Tripa Kija, Vahe Gita Kalsa.
0: And you need to have it away in the back.
1: You want to do here first?
2: No. Sri Vahe Guru Sahib Ji.
1: First
2: time? No. Sri Vaheguru Sahib Ji. Sri Vaheguru Sahib Ji. Sri Vaheguru Sahib Ji. Sri Vaheguru Sahib Ji. Sri Vaheguru कुदरत वरसै रूप हर रंगा करे न चुरै ना मन रूम रूप न हारा अवनासी आपकत गोचर सदा सलामत खजू हमारा रहो तेरे दासरी को किसकी कान किसकी मीरा राखे आन जो लोडा प्रभ किया अजात तू लोडे को किसकी सात बेमुसा जा बेपरवाहो नानक दास कहो गुरबाहो आशा मल्ला पंजवा हर रात चोर हो छे रस माता घर में बस बाहर उठ जाता दुनिया जाई सच अमृत का था रार कर झूठी जग का था रहो भजो साहिब का से बरानी ऐसे गुण है अच्छा दो प्राणी चोलू जो सदी संगी काम न आवे सो फिर फिर मंगी कौ नान कृपा दीन दयाला तू पावे तू कर

पालातौ कचुना व्यापै राम नाम गुण गाए डाकी को चित कचुन लागे चरण कमल करनाए संत प्रसाद पे कृपाला हुए आप सहाये गुण दानित गावे नानक सहसा दुख दुख मिटाए आशा महला पांजवा औखद खायो हर क्यों नाओ चुप पाए दुख पिंसिया खाओ ताप गया भजन गुरपुरे अंध प्या सब मिटे बिजूरे जी जंत सगल सुख पाया पार बम नानक मन त्याया आशा महला पांजवा बाँचत नाही सो बेला आई बिन हुक्मे क्यों बुझे बजाई ठंडी साती मिट्टी खाई ओह न बाला बूढ़ा पाई रहाओ नानक दास साधु करनाई गुर प्रसाद पौ पार पराई आशा महला पांजवा सदा सदा आत्म प्रगास साधु संग हर चरण निवास राम नाम नित्य जपन मेरे शीतल साध सदा सुख पावे किल्बक जाए सबे मन तेरे राव को नानक जाके पूर्ण कर्म सतगुरु पेटे पूर्ण पूर्ण पार जैम दूजे करके चौतीस आशा मल्ला पांजवा जाका हर स्वामी प्रभु बेली फिर गई फिर नहीं दुहेली राव कर कृपा चरण संग मेली सुख सहज अनद सुहेली गुण गाय अचोली हर सिमृत नानक परी अचुख मोली आशा महला पांजवा काम क्रोध माया मत मत्सर एक खेल सब जुए हारे सत्संतोख दया धर्म सच हे अपने गृह पीछे वारे जन्म मरण चुके सब पारे मिल्क संग पयो मन निर्मल गुरु पूरे लखिन में तारे राव सब किरण हुए रहे मनुआ सगले दिसे मीत प्यारे सब मते रवे मेरा ठाकुर दान देत सब जी हमारे एको एक आप एक है एक है सगला पासारी जब जब हो सगल साध जाना एक नाम त्याए बहुत उदारे गैर गंभीर त्याग गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा से गुण गावे नानक त्याए तय प्रभु निस्तारे आशा महला पांजवा तू भी अगोचर ये सब तेरा आकार हो क्या हम जंत करे चतुराई क्या सब की तुझे मजार हो मेरे सतगुरु अपने बालक राखो मेरे सतगुरु अपने बालक राखो लीला तार हो देव समात सदा गुण गावा मेरे ठाकुर अगम पार हो राव जैसी जन्म जठर में प्राणी वो रहता नाम आधार हो आनंद करे सास सास मारे ना पोहे अगनार पर तन पर तारा पर निंदा इनचो पीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर सुर पूरे कह आधार गृह मंत्र महला ज्योति से ना कोई संगार जब लग जीवे कली काल में जन नानक नाम सुमार आशा करती जा महला पांजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज मिलक जोगन गृह शोभा रूप मत जोआनी बहुत गर्व हस्ती हर घोड़े लाल लाख बहानी आगे दरगह काम न आवे छोड़ चले अपमानी काहे एक बिना चित लाइया ऊट से बैठ सोगत जागत सदा सदा हर ध्याय रहो महाविचित्र सुंदर आकारे रण में जिते पवाड़े ओ मारो ओ बंधो छोड़ो मुख दे एव बवाड़े आया हुकुम पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म तर्म युक्त बहु करता करने हार न जाने
उपदेश करे आप न कमावे तद सब न पहचाने नांगा आया नांग हो जासी जो हसी खा पहचाने संत सज्जन सुनो सब मीता टूटा एहु पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमुख नानक नाम से आया सात नाम निस्तारा राग या सा कर पंजवा महला पंजवा एक ओ खाल सतगुर प्रसाद कम मह सोई सही चल तंद अंध तू जागे हर जन महा मोनी मगन प्रिया इसम प्राण कोई त्यागे बिरला चरण कमल अनूप हर संत मंत तू लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग प्रभागी कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सेवा महला पांचवा जो तुझ पावे सो प्रवाना सुख सहज मन सोई कर्म कारण समर्थ अपारा अवर ना हीरे कोई तेरे जन रसक रस गुण गाव है मसलत मता स्यान पर जन की जो तू करे कराव है रहाव अमृत नाम समारा प्यारे सा संग रस पाया पगाए से जन पूरे सुख दान हर गाया जाको टिक तुम्हारी कौमी ताको ना ही चिंता जाको दया तुम्हारी होई से साहा पले भगवंता परमो तो सब मुझे जब का दर्शन पाया बर्तन नाम नानक सच कीना हर नामे रंग समाया आशा महला पांजवा जन्म जन की मल सो वह प्राई

अपना धरता दीसावत है बहुत भई हला सगल चन की एहो मन राला नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया आसा महला पंजवा आवत पावत रलियां जोबन बलियां नाम बिना माटी संग रलियां कान कुंडलियां बस्त्र उडलिया से सुखलिया मान गरबलिया राव तले कुंचरिया सिर कनक छत्रियां हर भक्त बिना ले धरन गडलिया रूप सुंदरिया अनक स्त्रियां हर रस बिन साब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बेखलिया सर नानक प्रभ पुरख देखलिया आसा महला पंजवा एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहा मह फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइये पद निर्वाणी

पत डाली, सगल बनस्पत आण जड़ाई, सगली फूली नह फल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन माया। खासा महला पंजमा, राज लीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। सर्व सुखा बने तेरे उल्लै, भ्रम के परदे सतगुर खोले राव। हुक्म बूज रंग रस माने, सेत गुर सेवा महा निर्बाणे। जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी प्रवान, नाम रत्ता सोई निर्बाण। जाको मिलिया नाम निधाना, भनत नानक ताका पूरख जाना। आसा महला पंजवां, तीर्थ जाओ तो हो करते, पंडित पूछो ता माया राते। सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता रहो।

अहंकार कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी थिन माया। साध संगत हर कीर्तन गाइये एहो आसान गुरु तै पाइये। रहाउ दूजा आसा महला पंजवा घर मैं सुख बाहर कुन सुखा। हर सिमरत सगल बनासे दुखा सगल सुख जा तू चित आवे। सो नाम जपै जो तन जन तुद भावे रहो। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत ढहे दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया भगत नानक मेरे मन सुख पाया। आसा महला पंजवा जा पठावो तह तै जाई जो तुम दे सोई सुख पाई। सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते त्रिवत अगाई। रहो तुमरा दिया पैनो खाई ओ प्रसाद प्रभ सुखी बलाई। मन तन अंतर तुझे त्याई तुमरे लवे ना को लाई। कहो नानक नित वे त्याई गत होवे संते लग पाई। आसा महला पंजवा ऊठत बैठत सोवत ध्याइये मार्ग चलत हरे हर गाइये। श्रवण सुनिजय अमृत कथा जा सुनी मन होए आनंदा। दुख रोग मन सगले लथा रहो कार्य काम बाट काट जपिए। गुर प्रसाद हर अमृत पीजै दिन स रैन हर कीर्तन गाइये। सो जन जम की बात न पाइये आठ पैर जिस विसरहे नाही। गात होवे नानक तिस लग पाई। आसा महला पंजवा जाके सिमरन सुख निवास भई कल्याण दुख होवत नास। आनंद करो प्रभ के गुण गाव हो सतगुर अपना सद सदा मनाव हो रहो। सतगुर का सच शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो। पर का बुरा ना राखो चीत तुमको दुख नहीं भाई मीत। हर हर तंत मत गुरदीना एहो सुख नानक अनदिन चीना। आसा महला पंजवा जिस नीच को कोई ना जाने नाम जब तो चोह कुंट माने। दर्शन मागो दे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। रहाओ जाके निकट न आवे कोई सगल श्रेष्ठ उआ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहु नावत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे तब प्रभ नानक मीठे लागे। आसा महला पंजवा एको एकी नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो। राम रामा रामा गुण गावो संत प्रताप साध कै संगे। हर हर नाम त्यावो रे रहो सगल समगरी जाके सूत परोई। खड़ खड़ अंतर रव्या सोई ओपत परलो किन मैं करता आप लेपा निर्गुण रहता। करन करावन अंतर जामी आनंद कर है नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पुवारे दुलाब देहे जीती नहीं आरे। किलबिक बिनासे दुख दर्द दूर भय पनीत संतन की दूर रहो। प्रभ के संत उदाहरण जोग तिज भेटे जिस तुर संजोग। मन आनंद मंत्र गुरदिया त्रेसन बुझी मन नह चलतिया। ना पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाई बुद्ध। आसा महला पंजवा मिटी त्यास अज्ञान अंधेरे साध सेवा अग कटे कनेरे। सुख सहज आनंद खना गुर सेवा ते भय मन निर्मल
हर हर हर हर नाम सुना रहो। बिन सो मन का मूर्ख दीटा, प्रभ का भाणा लागा मेटा। गुरपुरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्मे हो सफल भया, कौ नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां, सतगुर अपना साध सदा समारे। गुर के चरण केस संग चारे,

होए कन करावन हार प्रभ सोए रहो मूरख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी जप तप संजम कर्म ना साधा नाम प्रभु का मने अरादा पिछु न जाना मत मेरी तोरी बिन मत नानक ओट प्रभ तेरी आसा महला पंजमा हर हर अखर दोए एह माला जपत जपत पाए दीन दयाला करो बेनती सतगुरु अपनी कर कृपा राखो सरणाई मोको देहो हरे हर जपनी रहो हर माला और अंतर धारे जन मन का दुख निवारे हृदय संभाले मुख हर हर भूले सो जाने तुत कते ना डोले कहो नानक जो राचे नाए हर माला ता के संग जाए आसा महला पंजमा जिसका सब किस तिसका होए तिस जन लेपना व्यापे कोए हर का सेवक सदी मुक्ता जो किच करे सोई फल जन ताके अत निर्मल दास की जुगता रहो सगल त्याग हर सरणी आया ते जन का व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुपने नाए कहो नानक गुर पूरा पाया परम हो सगल बिदन साया आसा महला पंजमा जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा तां दुख भरम कहो कैसे नेरा सुन सुन जीवा सोई तुम्हारी होए निर्गुण को ले उधारी रहाओ मिट गया दुख बसारी चिंता फल पाया जप सतगुर मंता सोई सत सत है सोए सिमर सिमर रख कंठ परोए कहो नानक कौन ओह कर्मा जाके मन बसिया हर नामा आसा महला पंजवा काम क्रोध अहंकार विगुते हर सिमरन कर हर जन छूटे सोए रहे माया मद माते जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ वो परम वो जोन पुआया अस्त्र भगत हर चरण ते आया बंधन अंधकूप ग्रह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहो नानक जो प्रभ सरनाई इहा सुख आगे गत पाई आसा महला पंजवा।

का कै घर रगावन हो रोवे को हस हस पावन राव बाल व्यवस्था ते बिरधाना पहुँचना मौका फिर पछताना त्रिहो गुण मैं वरतै संसारा नरक सुरग फिर अवतारा कहो नानक जो लाया नाम सफल जन्म ताका परवान आसा महला पंजवां सोए रही प्रभ कबन ना जानी भौर प्या भौर पछतानी प्रै प्रेम सहज मन आनंद धरूरी

हरि अहंकारे दोष नाही प्रभ करणे हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सृजन हारे आसा महला पंजमा चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर

अब राखो पहुँच ना साके चन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहजानंद बसै बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय मह दी जय आसा महला पंजवा मन त्रिपतानो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद भली बनी जाक ग्रह सब किच है पूरन सो भेटिया निरभय।

मनसा मेरी देख चलित मन भय दिलासा नानक दास तेरा परवासा आसा महला पंजवा आंदन मूसा लाज टुकाई गिरत कूप मैं खाए मिटाई को सोजत साचित रहन बिहानी अनक रंग मा के चितवत कबू ना सिमरे सारग पानी रहाओ द्रुम की छाया नैचल ग्रह बांधिया काल के फांस सकत सर सांधिया बालू किनारा तरंग मुख आया सोतान मोड़ नैचल कर पाया साध संग जपो हर राय नानक जीवै हर गुण गाए आसा महला पंजवा दो तुके नौवा उनके संग तू करती केल।

गर्भ मोह तज हो रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही अरादो, दिन सरैन एह सेवा साधो। भय कृपाल गोपाल गोविंद, साध संग नानक बख सिंध। आसा महला पंजवा। प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे न कोए। प्रभ की प्रीत हमें मल कोए, प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए। सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण घट घट आधार रहो। प्रभ की प्रीत भय सगल।

पंजवा इन सो प्रीत करी कनेरी जो मिलिए तो वदे वधेरी गल चमड़ी जो छोड़े नाही लाग छोटो सतगुर की पाई जग मोनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी बधाई राव ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट बाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद मैं खोटी डेठी अगरक उसके वड्डे ठगाऊ छोड़े नाही बाप ना माऊ

अब अपने बिन अब न जाने कोड़ कोड़ अग काटन हारा दुख दूर कर जी कैदा तारा सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संति चली ताका संग बादशह सुरदेव उमोग दर्श सफल जाकी सेव कार जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत टहल दीजे गुणतास

बैर गुरपुरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसिया हर का नाम, नानक तिस ऊपर कुर्बान। आसा महला पंजवां।

को भया दयाला सो जन होवा सदा निहाला आसा महला पंजमा सतगुर साचे दिया भेज चिर जीवन उपजा।

बोलै गुर कै भाण, गुजी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवा, गुरपुरे राख्या देहात, प्रगट भया जन का प्रताप। गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई, जी की अरदास गुरु पै पाई राव। सरन परे साचे गुरदेव पूर्ण होई।

पूर्ण वडियाई। सदा सदा गुण गाये जप नाम मुरारी, नेम नवाहो सतगुरु प्रभ कृपा धारी।

ताको पौ करिए गुर सेवा महल पाइये जग दूतर तरिए त्रेष्ठरी सुख पाइये मन माए निधाना

कर्ता निर्भव निर्वय अकाल अमृत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य सोचे सोच न हो गई